पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे

पार्थिवास एफएम समय सूचन। यो पार्थिवास एफएम को समय हो। अहिले दिउँसो 4 बजे